और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं, मगर वो जो असीर होकर लौंडियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ये हुक्म खुदा ने तुमको लिख दिया है, और इन महरमात के सिवा और औरतें तुमको हलाल हैं इस तरह से कि माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ते के निकाह से मकसूद इफ्फत कायम रखना हो, न शहवत रानी। तो जिन औरतों से तुम फायदा हासिल करो उनका महर जो मुकर्रर किया हो अदा कर दो, और अगर मुकर्रर करने के बाद आपस की रजामंदी से महर में कमी बेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है।

खुदा चाहता है कि अपनी आयतें तुमसे खोल खोल कर बयान फरमाए और तुमको अगले लोगों के तरीके बताए और तुम पर मेहरबानी करे, और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है।

क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने तई पाकीजा कहते हैं? नहीं, बल्कि खुदा ही जिसको चाहता है पाकीजा करता है, और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा।

उन लोगों के दिलों में जो कुछ है खुदा उसको खूब जानता है। तुम उनकी बातों का कुछ ख्याल न करो और उन्हें नसीहत करो और उनसे ऐसी बातें कहो जो उनके दिलों में असर कर जाएं।

دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

फिर जब तुम नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में खुदा को याद करो। फिर जब खौफ जाता रहे तो इस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह अमन की हालत में पढ़ते हो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है।

0: मरीदा।
1: ये जो खुदा के सिवा जो परस्तिश करते हैं तो औरतों ही की, और पुकारते हैं तो शैतान सरकश ही को।
0: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا।
1: जिस पर खुदा ने लानत की है जो खुदा से कहने लगा, मैं तेरे बंदों से गैर खुदा की नजर दिलवाकर माल का एक मुकर्रर हिस्सा ले लिया करूंगा।

जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या ये उनके यहाँ इज्जत हासिल करनी चाहते हैं? तो इज्जत तो सब खुदा ही की है।

जो तुमको देखते रहते हैं, अगर खुदा की तरफ से तुमको फतह मिले तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ न थे, और अगर काफिरों को फतह नसीब हो तो उनसे कहते हैं कि क्या हम तुम पर गालिब नहीं थे और तुमको मुसलमानों के हाथ से बचाया नहीं, तो खुदा तुम में कयामत के दिन फैसला कर देगा और खुदा काफिरों को मोमिनों पर हरगिज गलबा नहीं देगा।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अस्सलामु अलैकुम ख्वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हयात तय्यबा की 15वीं नशिस्त के साथ कासिम भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामईन, पिछली नशिस्त में हम कामयाबी की बिशारतों का जिक्र कर रहे थे जिनका जिक्र कुरान मजीद के अंदर आ चुका है। आज हम उसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों के अंदर तबलीगे रिसालत के लिए तशरीफ ले जाते तो सिर्फ जन्नत ही की बिशारत नहीं देते थे बल्कि दो टोक लफ्जों में इसका भी ऐलान फरमाते थे, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब रहोगे और इसकी बदौलत अरब के बादशाह बन जाओगे और इसकी वजह से अजम भी तुम्हारे जेरे नगी आ जाएंगे, फिर जब तुम वफात पाओगे तो जन्नत के अंदर बादशाह रहोगे। ये बात पिछली नशिस्तों में गुजर चुकी है कि जब उतबा बिन रबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मताए दुनिया की पेशकश करके सौदेबाजी करनी चाही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में हामीम तंजील सजदा की आयात पढ़कर सुनाई तो उतबा की ये तवक्को बन गई कि अंजामकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब रहेंगे। इसी तरह अबू तालिब के पास आने वाले कुरैश के आखिरी वफ्द से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुफ्तगु हुई थी इसकी भी तफसीलात गुजर चुकी हैं। इस मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सराहत के साथ फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे सिर्फ एक बात चाहते हैं, जिससे वो मान लें तो अरब इनका ताबे फरमान बन जाए और अजम भी इनकी बादशाहत कायम हो जाएगी। हज़रत खुबाब बिन आरत का इरशाद है कि एक बार मैं खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साए में एक चादर को तकिया बनाए तशरीफ फरमा थे। इस वक्त हम मुशरिकीन के हाथों सख्ती से दोचार थे। मैंने कहा, क्यों ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग तुमसे पहले थे इनकी हड्डियों तक गोश्त और आसाब में लोहे की कंघियां कर दी जाती थी लेकिन ये सख्ती भी इन्हें दीन से बाज ना रखती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस अमर को यानी दीन को मुकम्मल करके रहेगा यहाँ तक के सूरा सना से हजरत मौत तक जाएगा और इसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ ना होगा, अलबत्ता बकरी पर भेड़िये का खौफ होगा। एक रिवायत में इतना और भी है कि लेकिन तुम लोग जल्दी कर रहे हो। याद रहे कि ये बिशारतें कुछ ढकी छुपी ना थी बल्कि मारूफ व मशहूर थी और मुसलमानों ही की तरह कफार भी इनसे वाकिफ थे। चुनाचे जब अस्वद बिन मुतलिब और इसके रुफका सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु मजमाइन को देखते तो तानाजनी करते हुए आपस में कहते कि लीजिए, आपके पास रूए जमीन के बादशाह आ गए हैं, ये जल्द ही शहाने कैसर व किसरा को मगलूब कर लेंगे। इसके बाद वो सीटियां और तालियां बजाते। बहरहाल सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ इस वक्त जुल्म व सितम और मसाइब व आलाम का जो हमागीर तूफान बरपा था, इसकी हैसियत हसूल जन्नत की इन यकीनी उम्मीदों और ताबनाक व पुरवकार मुस्तकबिल की इन बशारतों के मुकाबिल इस बादल से ज्यादा ना थी जो हवा के एक ही झटके से बिखर कर तहलील हो जाता है। इलावजा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान को ईमानी मरगुबात के जरिए मुसलसल रूहानी गजा फराहम कर रहे थे, तालीम किताब व हिकमत के जरिए इनके नफूस का तज़किया फरमा रहे थे, नहायत वकीक और गहरी तरबियत दे रहे थे और रूह की बुलंदी, कल्ब की सफाई, इखलाक की पाकिजगी, मादियात के गलबे से आज़ादी, शहवात की मुकावमत और रब्बुस समावात वल अर्ज़ की कशिश के मुकामात की जानिब इनके नफूसे कुदसिया की हद ख्वानी फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दिलों की बुझती हुई चिंगारी को भड़कते हुए शोलों में तब्दील कर देते थे और इन्हें तारीकियों से निकालकर नूरे हदायत में पहुंचा रहे थे। इन्हीं अजियतों पर सबर की तलकीन फरमाते थे और शरीफाना दरगुजर और जब्त नफ्स की हिदायत देते थे। इसका नतीजा ये था कि इनकी दीनी पुख्तगी फजूतर हो गई और वो शहवात से किनारा कशी, रजा इलाही की राह में जहाँ सिपारी, जन्नत के शौक, इल्म की हर्स, दीन की समझ, नफ्स के मुहासबे, जज्बात को दबाने رجحانات کو موڑنے، ہیجانات کی لہروں پر قابو پانے اور صبر و سکون اور عز و وقار کی پابندی کرنے میں انسانیت کا نادرہ روزگار نمونہ بن گئے۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदीद।
2: बैरून मक्का दावत इस्लाम, शवाल सने नबूवत अवाखिर मई या अवाइल जून 619 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए। ये मक्के से तकरीबन 60 मील दूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये मुसाफत आते जाते पैदल तय फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। रास्ते में जिस कबीले से गुजर होता इसे इस्लाम की दावत देते, लेकिन किसी ने भी ये दावत कबूल ना की। जब ताइफ पहुँचे तो कबीला सकीफ के 3 सरदारों के पास तशरीफ ले गए, जो आपस में भाई थे और जिनके नाम ये थे अब्दे यालील, मसूद और हबीब। इन तीनों के वालिद का नाम उमरु बिन उमेर सकफी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इनके पास बैठने के बाद इन्हें अल्लाह की इताअत और इस्लाम की मदद की दावत दी। जवाब में एक ने कहा कि वो काबे का पर्दा फाड़ेगा अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाया हुआ। दूसरे ने कहा कि अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और ना मिला। तीसरे ने कहा मैं तुमसे हरगिज़ बात न करूँगा, अगर तुम वाकई पैगंबर हो तो तुम्हारी रद्द करना मेरे लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और अगर तुमने अल्लाह पर झूठ घड़ रखा है तो फिर मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं चाहिए। ये जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वहाँ से उठ खड़े हुए और सिर्फ इतना फरमाया, तुम लोगों ने जो कुछ किया बहरहाल इसे पसे पर्दा ही रखना। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़याम फरमाया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इनके एक एक सरदार के पास तशरीफ ले गए और हर एक से गुफ्तगू की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि तुम हमारे शहर से निकल जाओ, बल्कि इन्होंने अपने उबाशों को शह दे दी। चुनाचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने वापसी का कस्त फरमाया तो ये उबाश गालियाँ देते, तालियां पीटते और शोर मचाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पीछे लग गए, और देखते देखते इतनी भीड़ जमा हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दोनों जानिब लाइन लग गई। फिर गालियों और बदजुबानियों के साथ साथ पत्थर भी चलने लगे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की एड़ी पर इतने जख्म आए कि दोनों जूते खून में तर बतर हो गए। इधर हजरत ज़ैद बिन हारिसा ढाल बनकर चलते हुए पत्थरों को रोक रहे थे, जिससे इनके सर में कई जगह चोट आई। बदमाशों ने यह सिलसिला बराबर जारी रखा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को उतबा और शेबा इब्नाए रबिया के एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। ये बाग ताइफ से 3 मील के फासले पर वाक़ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने यहाँ पर पनाह ली तो भीड़ वापस चली गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम एक दीवार से टेक लगाकर अंगूर की बेल के साय में बैठ गए। कदरे इत्मीनान हुआ तो दुआ फरमाई, जो दुआए मुस्तज़फीन के नाम से मशहूर है। उस दुआ के एक एक फिक्रे से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ताइफ में इस बदसलूकी से दो चार होने के बाद और किसी एक भी शख्स के ईमान न लाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम किस कदर दिल फिगार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के एहसासात पर हज़्न आलम और गम अफसोस का किस कदर गलबा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह, मैं तुझी से अपनी कमज़ोरी और बेबसी और लोगों के नज़दीक अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। या रहमतुल लिल आलमीन, तू कमज़ोरों का रब है और तू ही मेरा रब है, तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के जो मेरे साथ तुम दी से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया है? अगर मुझ पर तेरा गज़ब नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज़्यादा कुशादा है। मैं तेरे चेहरे के इस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तारीकियाँ रोशन हो गई और जिस पर दुनिया और आखिरत के मामला दुरुस्त हुए, कि तू मुझ पर अपना गज़ब नाजिल करे या तेरा उताब मुझ पर वारिद हो। तेरी ही रजा मतलूब है, यहाँ तक कि तू खुश हो जाए और तेरे बगैर कोई ज़ोर और ताकत नहीं। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को इब्नाए रबिया ने इस हालत ज़ार में देखा तो इनकी जज्बा क़राबत में हरकत पैदा हुई, और इन्होंने अपने एक ईसाई ग़ुलाम को جس کا نام اداس تھا، بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ اداس نے کہا، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسا دیا۔ یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا، اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب اداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا، اجی، یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا، میرے آقا، روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا، دیکھو اداس، کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے تو مکہ کی راہ پر چل پڑے۔ غم و علم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا۔ کرنے منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کرنے آیا

0: अगर इसने मेरी बात मंजूर ना की तो मैं गम अलम से निढाल अपने रुख पर चल पड़ा और मुझे किरन तालब पहुँच कर ही अफाका हुआ। वहाँ मैंने सर उठाया तो क्या देखता हूँ कि बादल का एक टुकड़ा मुझ पर साया फगन है। मैंने बगौर देखा तो इसमें हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। इन्होंने मुझे पुकार कर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात कही है अल्लाह ने उसे सुन लिया है। अब इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ताकि आप इनके बारे में इसे जो हुक्म चाहें दें। इसके बाद पहाड़ों के फरिश्तों ने मुझे आवाज़ दी और सलाम करने के बाद कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यही है, अगर चाहें कि मैं इन्हें दो पहाड़ों के दरमियान कुचल दूँ तो ऐसा ही होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़वजल इनकी पुश से ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेगी और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराएगी। सामईन, वक्त की कमी के बायस अपने इस सिलसिले को यहीं पर बर्खास्त करते हैं। इसके साथ ही कासिम भट्टी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dil mein.

0: ویلکم بیک معزز سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا سے بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہفتہ وار پروگرام ہے. آج جس ڈپارٹمنٹ کی باری ہے اس کا نام ہے ڈپارٹمنٹ آف بیسک اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ایچ او ڈی ڈاکٹر سمیرا زیب, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مس انم طاہر. چلیں بغیر کسی وقت ضائع کیے ہم دوبارہ اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں, اور میں پوچھنا چاہوں گا میم سمیرا زیب سے, کیونکہ ایچ او ڈی ہیں, میں مجھے اب یہ بتائیے گا یہ جو دور ہے یہ بڑا کٹ تھروٹ دور ہے, اس میں بہت زیادہ کمپٹیشن چل رہا ہے. لاہور میں اتنے ادارے ہیں, اتنی یونیورسٹیز ہیں, وائی دا اسٹوڈنٹ شوڈ آفٹ فور یور ڈپارٹمنٹ فرسٹ اینڈ یو سی پی؟ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف دوڑتے چلے آتے ہیں؟
1: تھینک یو سو مچ سر. اسٹوڈنٹس آج کل بڑا میٹر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیوں ہم کسی بھی یونیورسٹی کو, اگر فی اسٹرکچر سملر ہے, ڈگری سملر ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں یا گورنمنٹ میں, کوئی ڈفرینس کا ہے؟ جیسے مس انم نے بتایا کہ ڈپارٹمنٹ آر فیکلٹی آر یونیورسٹی از لائک سیکنڈ ہوم ٹو ہر. سملرلی ہمارے پاس کچھ فیکلٹی ممبرز ہیں جو کہ 8 سے 10 سال ہو چکے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, یا جو ویری اسٹارٹ سے 2015 سے جب سے ڈپارٹمنٹ بنا یا جب سے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ بنا, سارے وہ موسٹلی وہ فیکلٹی ممبرس ہیں جنہوں نے بنیادیں ڈالیں ڈپارٹمنٹس کی, اور وہ یہاں پر تب سے ابھی تک ہیں. اس کا مطلب ہے کہ موسٹ سیٹسفائنگ کنڈیشن ٹورڈز دا ڈپارٹمنٹ, ٹورڈز دا یونیورسٹی ہیں ہر ٹرمز میں, فیکلٹی ممبرس میں, لائک کووڈ میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں. اور یہ اسٹوڈنٹس کو, آل دو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے وہ یہ ان چیزوں سے انہیں شاید غرض نہیں یا وہ جانتے نہیں کہ ہر روز آئے دن اگر ٹیچر بدلتا رہے, ایک سیمسٹر وائز یا سال میں ایک دو دفعہ ٹیچر چلے گئے, آرگینک کے, بایو کیمسٹری کے, ان آرگینک کے, انالیٹیکل کے, فزیکل کے, اسٹارٹ سیمسٹر کسی اور ٹیچر نے کیا, دین انہوں نے اینڈ آف سیمسٹر پیپر کسی اور ٹیچر نے بنا لیا, مارکنگ کسی اور نے کر لی, تو یہ والی چیزیں الحمد للہ ہمیں یو سی پی میں, ایف او ایس ٹی میں یا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں کبھی فیس نہیں کرنی پڑی. کبھی کسی ٹیچر کو ادر دین کے کبھی انہیں پروفیشنل گروتھ یا فیملی ٹرمز کے ود فیمیلز کو ہسبینڈس کے ساتھ کسی اور سٹی یا کسی اور کنٹری شفٹ نہیں ہونا پڑتا, دے نیور وینٹ فار کہ ہم کسی اور یونیورسٹی کو آپٹ کریں.
0: مس انم, آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا, بسائڈ ٹیچنگ رائٹ وچ از یور پرائمری رول, کیا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی فن پارٹ بھی ہے؟ ایسا بھی کوئی ایلیمنٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس انجوائے بھی کریں, پڑھیں بھی اور ساتھ ساتھ لطف اندوز بھی ہوں؟
2: سر تھینک یو سو مچ. آئی تھنک دا آڈینس وڈ بی الاٹ انٹرسٹڈ ان دس ٹائپ آف اے کوشچن بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ ایوری بڈی ریزونیٹس ود. ون تھنگ دیٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایڈ فرسٹ ان دا کنٹینیوشن آف وٹ ڈاکٹر سمیرا واز سیئنگ, شی ہیز مینشنڈ ان اے ویری گڈ ڈیٹیل دیٹ وائی کیمسٹری اینڈ وائی لائک آئی ایم کمنگ ٹو ٹورڈز دا فن پارٹ, بٹ لیٹ می کیٹر ٹو دیٹ. آئی وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ فرسٹ. There is one thing that there is a season that I have seen so many times, and I think that my audience must have seen that as well. That is Sherlock Holmes. He has basically acted as a forensic scientist, and that show has been so fascinating. You watch one episode and you go back to it again and again and again. I myself was wanting to see the next season. I desperately waited for that. So there are nieces and nephews at my home who asked me this question, that what is that Sherlock Holmes had studied, what is it that he was doing? So this was something that I was proud of when I was answering them, that he is basically a chemist. His roots belongs to chemistry. So basically, chemistry is something that resonates with everything around us. It's a core of all of the sciences. So you name any of the field that may seem boring to you, and we still have chemists in them. You name a field that is a very fun, activity-based thing, that industry that has something that you want to go to, it also has chemists in them. So, like, other than the coming to the second part of your question, other than the academic activities that we have going on, other than that, we have multiple fun based activities. We don't want to bore our students. The thing is this, we have this concept in Faculty of Science and Technology, and specifically this is the core of our department. We don't teach science, we live science as well. So when we're living science, we make sure that our students are living every aspect of it, not only the academia. So we make sure by indulging students into like multiple, we were the pioneers of starting the annual dinner in the Faculty of Science and Technology. Annual dinner has been arranged for the student who are going to be an ongoing batch. This has been given for the student who are in their final semesters to the students who are ongoing. Other than that, our students have multiple type of other activities in the university. For example, recently we have Faculty of Science and Technology and under the umbrella of Engineering Department, we have arranged an event that was named as FEST. It was a festival where specifically the Department of Basic and Applied Chemistry organized its own magic show. And the audience applauded it a lot. It was a hit even in the last years and in this year as well. Other than that, when we talk about multiple other things, I will sum it up by telling you that we have Takhleeq incubation and ideation over here. Our student also presents abstract. They are also participating in poster presentation. There is a long list. Inshallah, in the coming sessions, we're going to be sharing more as well.
0: Very well explained. Let me add to it, as a famous saying goes, that your students have their chemistry matching up with your teachers, isn't it?
2: Yeah, exactly. Yeah. Yes.
0: It's like that.
2: Yes.
0: So, ma'am se madam, main aapse puchna chahunga ki jab aapke students faragul tahsil ho jate hain, jab wo graduation kar lete hain, to kya aise iqdamat hain jo aapne apne department mein uthaye hain, wo ensure karte hain ki aapke students jab job market mein jaye to unko haathon haath qabool kiya jaye.
1: Oh, thank you so much for this question, sir. बेसिकली स्टार्ट ऑफ डिग्री से हम उनको जब ये स्टूडेंट बीएस में आता है तो 3-4 सेमेस्टर गुजारने के बाद जब उसको आइडिया हो जाता है कि जब मैं ये डिग्री, कोई भी डिग्री और स्पेसिफिकली केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री की डिग्री लेकर मार्केट में निकलूंगा और मेरे साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में यही डिग्री लेकर स्टूडेंट निकलेगा तो कम्पीट करना पड़ेगा ज़्यादा सैचुरेशन की वजह से. और जब कम्पीट करना पड़ता है तो ऑब्वियसली सिर्फ डिग्री चेक नहीं होती. और ये स्टार्ट ही मैंने यहाँ से किया था कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स ख़ुद भी ये सब काम एक्स्ट्रा करिकुलर अदर देन हमारे लेवल पे, जब हम सीनियर्स एसोसिएट असिस्टेंट या प्रोफेसर लेवल पे आ जाते हैं तो हमारे लिए एक्स्ट्रा करिकुलर अदर देन टीचिंग और रिसर्च ही हो जाती है कि हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर सेमिनार, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेज और ऐसे सारे इवेंट्स अरेंज करें या करवाएं, वहाँ लेक्चर्स टॉक दें. इसी तरह हम अपने स्टूडेंट्स को, जब वो फिफ्थ, सिक्स या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आते हैं सेमेस्टर्स के बाद, तो हम उन्हें ये गाइड करते हैं कि अदर देन योर बेसिक डिग्री जो आप किसी भी हमारी यूनिवर्सिटी से लें या किसी और की, आपका जो CV होगा वो जांचा जाएगा कि आपने कितनी कॉन्फ्रेंसेस, कितने एब्स्ट्रैक्ट या कोई भी ऐसा कोई पेटेंट या कोई आइडिया आइडिएशन की तरफ कहीं टॉक, कोई वेबिनार, सेमिनार विद इन द यूनिवर्सिटी या आउटसाइड द यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान या ऑनलाइन. अब जब से कोविड गुजरा है तो हमारे मोस्टली सेशंस या कॉन्फ्रेंसेज जो कि हाइब्रिड मोड में हो रही हैं, ऑनलाइन भी एज वेल एज फिजिकल भी. तो अगर स्टूडेंट ऑब्वियसली आउटसाइड द लाहौर ट्रेवल नहीं कर सकता तो वो ऑनलाइन मोड के थ्रू सर्टिफिकेशन ले लेता है. ये सारे वो स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम अपने स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि आप जब BS डिग्री लेने के बाद या समटाइम MS डिग्री लेने के बाद बाहर निकलेंगे तो ये सारी डिग्रीज तो बाकी एप्लीकेंट्स के पास भी होंगी, लेकिन यू शुड बी हैविंग सम एक्स्ट्रा करिकुलर इन योर CV दैट शुड मेक योर CVs बल्क अदर देन CGPA एंड डिग्री.
0: मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या ऐसी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को देती हैं या उनमें इनकलकेट करती हैं, इंस्टिल करती हैं, कि जहाँ जाते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ UCP की छाप लेके जाते हैं.
2: सर, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट वी डोंट टीच साइंसेस, वी डोंट टीच केमिस्ट्री, वी लिव केमिस्ट्री एज वेल. सो आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी वॉन्ट टू इनकलकेट इन आर स्टूडेंट इज दिस, दैट देयर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर बट दे शुड बी एबल टू एडवर्टाइज टू मार्केट दोज कॉन्सेप्ट वेन दे गो इन टू द प्रोफेशनल लाइफ. सो टू इंश्योर दैट वी हैव लाइक आर सिस्टम इज वेरी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, our courses, our curriculum is properly broken down into segments that ensures that the students are not just cramming the books. So we have very, very planned activities going on throughout the semester. We have assignments, we have project-based activities, we also have lab activities where we don't, as a teacher, we are not the only person who is standing over there and just babbling all the stuff of chemistry to the students. We make sure that the students are also participating. We sometimes reverse roles in the class as well. Other than that, we make sure that we take them on field as well. They are in the classes. We also take them to industrial visits where they see that this is going to be their future one day, and this is where they're going to be cultivating their knowledge of chemistry, actually. So there are multiple things that we are doing to make sure, to ensure that the student knows that this is going to be his place in the future, inshallah.
0: Very rightly said. Ma'am, ek cheez puchna chahunga. Jaisa ki aap jante hain, ek bahut aaya hua hai downward spiral, jo ki pure sciences mein hai. Physics hai, chemistry hai, maths hai, zoology hai. To aap kaise ikdamat kar rahi hain jo ki is cheez ko mumkin banayengi ki aapke students zyada se zyada na sirf yahan aapke department mein aaye balki aap unko retain bhi kar saken.
1: Okay sir, ye aajkal na hamara last 2 years se jab se ye IT ka bahut zyada rujhan ho chuka hai, jiski wajah se hamari bilkul aapne well said ka ye बेसिक साइंसेज का, खासकर जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड मैथ्स, ये सारे सफ़र कर रहे हैं. हमने कुछ इस तरह की इकदाम किए हैं कि ना सिर्फ बच्चों को अवेयरनेस दी है कि जॉब मार्केट क्या है, कल को अब जैसे हमारे पास आजकल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ काफ़ी सारे चल रहे हैं, उस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में हमें क्वालिटी कंट्रोल है या एकेडेमिया है, क्लाइमेट चेंज में तो हम ये जो गैस प्रोडक्शन, क्लीन वाटर जो कि नेसेसिटी है हमारी एनर्जी प्रोडक्शन, या अब ये स्टूडेंट्स को अवेयरनेस कहाँ पे दी जा सकती है या देते हैं. फेस्ट में हमारे बड़े वेल इक्विप्ड स्टूडेंट्स को हम जब FSC या मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स जब हमें विजिट करते हैं तो हम उनको लैब्स में एज वेल एज प्रैक्टिकली परफॉर्म करके ये थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं, उनकी अटेंशन सीख करने की कोशिश करते हैं. अलॉन्ग विद डैट कुछ अकेडमीज और कॉलेजेस में हमारे जूनियर टीचर्स विजिट करके उनको ये गाइडलाइन देते हैं कि अगर मेडिकल या इंजीनियरिंग में नहीं होता तो दे कैन ऑप्ट केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री फॉर दिस रीज़न कि हमारे पास जो इस वक्त में फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, टॉक्सिकोलॉजी है, ये सारी हमारी जॉब मार्केट हैं, तो हमें इसको फोकस करना चाहिए और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को फेस करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए.
0: जी मैम, मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा और एक और सवाल भी इसमें ऐड कर दूँ मैं कि हर करेक्टर का हिस्सा ना सिर्फ पढ़ाई होती है, तदरीस होती है, पर उसके साथ साथ उसमें मोरालिटी और एथिक्स भी होते हैं. इस पर भी मैं चाहूँगा पहले आप रोशनी डालिए, फिर मैं डॉक्टर सुमेरा से चाहूँगा कि आखिर में वो रोशनी डालें और इस तरह हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुँचाएंगे.
2: सर थैंक यू सो मच. सो वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड ओवर देयर इज दिस दैट व्हाइल सीकिंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स वी आर इंश्योरिंग ऑल ऑफ द स्टेप दैट आवर वर्दी HOD हैज मेंशनड. But other than that, we are also of this view that the times are changing, the world is changing. So to keep up with that, we are also modernizing our curriculum as per the guidelines of HEC. Also, we are introducing some courses that are ensuring that we are not only teaching chemistry to the students, we are also making them well equipped with things that are going to be in line with the IT and with the technology development, with where they can make sure that by having a chemistry degree, they can work remotely as well. So we are trying to make them equipped with the ongoing time as well. Other than that, there is a thing that is ensured in our department. When we talk about the morality of the department is this, that we show them this by example, by being an example. We have, as teachers, as faculty members, we attend multiple meetings with them as students in a collection where if your head of department, where your senior members are showing a respect, are showing a proper decorum to the junior ones, this sets a very good example for the students to see that there's a proper hierarchy. No matter wherever you sit, you have a say, you have a word, and in the proper limitation, in the proper obedience criteria, you can say anything that comes to your mind. So by setting the example by ourselves, we are ensuring that the students follows our footsteps.
0: Very right. Ma'am, Sumera, I would like to ask you, today is the time of entrepreneurship. So tell us, do you bring your students to startups too? Do you offer them
1: opportunities? Yes, absolutely. As Anam previously mentioned, it is a Takhleeq Incubation Center in UCP. उसमें हर साल या 6 माह बाद आइडिएशन का कंपटीशन, कुछ वो प्रोजेक्ट्स पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं एंड देन उनके फेज़ 1, 2 एंड 3 के बाद उनके फाइनल प्राइसेस लिए जाते हैं. और ये हमारे लास्ट ईयर के दो पोजीशन विनिंग थी जिसमें हमारी तख्लीक इंक्यूबेशन आइडिएशन में एक हर्बल टी थी जिसको सेकंड पोजीशन मिली थी थ्रू आउट द आइडिएशन, जिन्होंने ऑल थ्री राउंड्स में बेस्ट परफॉर्म किया था। एंड उसके अलावा एक लेदर था फ्रॉम द मशरूम्स, बिकॉज टिपिकली लेदर जो है उसमें आफ्टर आप कितना भी महंगा लेदर यूज़ कर लें जूतों में, जैकेट्स में, बैग्स में, लेकिन उनमें ही होता है कि आफ्टर 2 to 3 ईयर्स वो ख़राब हो जाता है लेदर, जितना भी एक्सपेंसिव होगा। लेकिन कुछ मशरूम बेस्ड लेदर्स हम लोगों ने उसको मैं जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसको ये किया कि इवन वो 5 to 10 ईयर तक उसका टेक्सचर या कलर ख़राब नहीं होता। तो ये दो प्रोजेक्ट्स हमारे उसमें गए और इनको इन्होंने प्राइज भी विन किया। एंड अलॉन्ग विद डैट हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अपने इन्हीं, जब हम 7th-8th सेमेस्टर में उनको रिसर्च कराते हैं बीएस की, तो हम उनमें से समटाइम पब्लिश भी करते हैं और वो समटाइम अच्छे जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। जब वो अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स जो कि अब्रॉड अप्लाई करते हैं फॉर देयर मास्टर प्रोग्राम्स पोस्ट ग्रेजुएट में, मास्टर्स से पीएचडी में, तो ऑब्वियसली जब मास्टर स्टूडेंट आता है तो वो हर डिपार्टमेंट का पब्लिकेशन के साथ जाता है और वो पीएचडी बाहर आसानी से हासिल कर लेते हैं। और मास्टर्स आपको पता है भी हमारा रिसर्च एक्सपीरियंस है, लेकिन हम कोशिश करते हैं केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में बीएस लेवल पे जो रिसर्च हम उन्हें कराते हैं दैट शुड बी फॉर दिस के हम उन्हें पब्लिश करा सकें। और स्टूडेंट जब बीएस करके यहाँ से निकलता है तो एटलीस्ट 1 आर्टिकल वो पब्लिश करा के साथ ले जाता है जो कि उन्हें मास्टर प्रोग्राम में स्कॉलरशिप लेने में इंटरनेशनली हेल्पफुल होते हैं। और इसकी एग्जाम्पल देना चाहूँगी छोटी सी कि हमारे इस वक्त में बीएस के स्टूडेंट इंटरनेशनली मास्टर प्रोग्राम में मास्टर स्कॉलरशिप्स जो कि फुली स्कॉलरशिप फंडेड स्कॉलरशिप्स में चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, बीएस केमिस्ट्री एज वेल एज बीएस बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स मोर देन 7 स्टूडेंट्स हमारे इन 5-6 मुल्कों में, और जो कि ये नहीं क्या डेवलप नहीं है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, जर्मनी और कोरिया में हमारे 8 स्टूडेंट्स इस वक्त मास्टर प्रोग्राम में इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में, इन सारी कंट्रीज़ में एडमिशन ले चुके हैं।
0: मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि आप बताइए कि आप अपने स्टूडेंट्स को जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे।
2: Sir, I would like to mention it to them that the world is your canvas. It is something that you have the ability to paint as per your own aesthetics. So do take your mark, do take whatever is in your head, do whatever is in your heart as well. By the combination of your heart and your mind, your heart and your head, you can do wonders. You can reach for multiple horizons. So don't hesitate in reaching anything that you wish for.
1: I would request students to stay out of their comfort zone. That's why they must be more productive and some honest people that are we are bringing them to real world.
0: The gist of both of your messages is, as I can infer from here and I can interpret it, that sky should be the limit.
2: Yeah. Yes.
0: Right? So, Madam Sumaira Zeb, Dr. Sumaira Zeb, Miss Anam Tahir, aapki tashreef aavri ka bahut shukriya. Isi ke saath, mauzi samain, hamara aaj ka program ikhtitam ki taraf badhta hai aur agle hafte betabi se hamara intezaar kijiyega. Hum ek naye program ke saath aapki khidmat mein hazir honge. Jaate jaate, Pakistan, जिंदाबाद।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: دو پتے پتجھڑ کے पेड़ों से उतरे थे फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं ऑक्सीजन मुहैया करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं परिंदों के लिए ठिकाना है सैलाब में रुकावट बनते हैं ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक टू एफ एम 92.6 यूसीपी की दुनिया. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उम्मीदें, और हमारे साथ मौजूद हैं केवान. केवान, हमें बताइएगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है.
4: पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस ज़रूरी नहीं है. मतलब पहले तो जाने पर्सनालिटी क्या है. मैंने जैसे अभी पहले ही बताया कि आपका बिहेवियर, आपका रवैया ही आपकी पर्सनालिटी बनाता है. मतलब अगर आपका रवैया किसी के साथ खामोश है, सबसे पहली चीज़ तो इंसान एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है. अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अच्छा इस मामले में ये शख्स सभी चुप कर जाएगा, लेकिन एकदम से वो कहता है आपको, वो गुस्सा करने लग जाता है. एक मामले पे आप देखते हो ये शख्स अभी गुस्सा करेगा, वो चुप कर जाता है. ये उसकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये उसका रवैया ऐसा है. कैसे, जैसे हम कहते नहीं हैं कि ये बहुत काम पर्सनैलिटी है. क्यों? क्योंकि वो बोलता वैसे है, खामोशी से रहता है, लोगों के साथ उसका रवैया इतना मीठा है कि उसका रवैया, उसकी पर्सनैलिटी को काम कहा जाता है. और जहाँ तक आपका सवाल था कि
3: कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए,
4: कॉन्फिडेंस इस हद तक ज़रूरी है कि अगर आप लोगों के साथ, अगर आप चाहते हैं कि आप सोशल ज़्यादा हों, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूरी है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बस मैं काम करना है, काम की हद तक रहना है, तो आपका कॉन्फिडेंस कितनी ज़रूरी. कुछ फील्ड्स जैसे मीडिया उनमें से एक है, जहाँ पे आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखना ज़रूरी है. वहाँ पे आपको डेवलप कर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ज़रूरी होगा ये कॉन्फिडेंस, लेकिन सब चीज़ों में नहीं.
3: ठीक है. और अगर हम प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें, तो उसमें कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है.
4: फिर ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने लोगों से मिलना है, बोल चाल लोगों से रखनी है, आपने बिजनेसमैन से अगर मिलना है, आपने कंपनी ओनर से मिलना है, आपने एक्टर से मिलना है, किसी से भी मिलना है, प्रोडक्शन से मिलना है, तो उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ऐसा गुण हो कि आप अगले से बात कर सको और उसको अपनी तरफ माइल कर सको.
3: ठीक है. जैसे आपने बात की कि पर्सनैलिटी रवैयों का नाम है, तो हम अपने रवैयों को कैसे बेहतर कर सकते हैं.
4: सबसे पहले तो बिहेवियर डिसाइड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है. आपने रवैये को ऐसे कि लोगों के साथ ऐसे रहें कि खामोश तबीयत, दरगुजर करें, कोई भी बात अगर आपको कर रहा है, लेट गो, फारिग कराओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी बात से. उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी. और सेकंड ये कि सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट खुद करें, अपनी डेवलपमेंट करें, उस पर फोकस करें.
3: ठीक है केवान, बहुत अच्छी आपने बात की कि हमारी पर्सनल ग्रोथ बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए. आपने केवान, हम देखते हैं कि रियल इस्टेट की तरफ भी इंटरेस्ट आपने लिया, प्रॉपर्टी के रेलेवेंट भी इंटरेस्ट लिया, तो इसमें आप हमें बताइएगा कि ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा.
4: मेरे वाले साहब का बिज़नेस है रियल इस्टेट का, दरअसल मेरा खुद का नहीं है, तो वो उनका बिज़नेस था. तो मेरे वालिद साहब, मैं कुछ और बिज़नेस कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, शॉपिफाई का कर रहा हूँ, ट्रेडिंग का कर रहा हूँ, मेरे वालिद साहब कहते थे कुछ भी कर, लेकिन ऑफ़िस टाइम ज़रूर थे. तो मैंने अगर ऑफ़िस थोड़ा सा टाइम देता, तो उससे ना मैं देखता था कि अगर आप देखो ना, पाकिस्तान में सबसे अच्छा बिज़नेस जो है वो या तो रियल इस्टेट का या गाड़ियों का है. बहुत अच्छा बिज़नेस, बहुत प्रॉफिटफुल बिज़नेस है. इस जितना प्रॉफिट अगर आप रियल इस्टेट में कर सकते हो ना, उतना आप किसी बिज़नेस में आप उतना प्रॉफिट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि महीने में क्या आप एक घर नहीं सेल कर सकते. एक घर सेल करो, 1% कमीशन एक साइड से, 1% कमीशन एक साइड से, 2% कमीशन आया, 1.5 CR का अगर वो घर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 3 lakhs आपका कमीशन आ गया. ये वो प्रॉफिट है जो एक छोटा डीलर कमा रहा है. छोटा डीलर, जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि जो कंपनीज पूरी पूरी ब्लॉक्स की डीलर आती हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन कुछ और है, वो किसी और तरीके से कमा रही हैं. वो इससे अगर ये 3 lakh कमा रहे हैं, तो वो उससे अगर उन्होंने 40 crore इन्वेस्टमेंट लगाई है, तो वो उसके हिसाब से कमाएंगे, डबल ट्रिपल कमाते हैं उससे. क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन उस लेवल का इसलिए है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टर के जरिए लगाई है. क्योंकि 40 crore अगर कोई एक इंडिविजुअल बंदा इतना रियल इस्टेट में कोई लगाता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता. मल्टीपल इन्वेस्टर्स उसके साथ जुड़ते हैं, फिर वो डील उठाता है, उसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है. फिर उसमें प्रॉफिट और लॉस के साथ अगर वो खेलते हैं ना, क्योंकि अगर आप दूसरा कर रहे हो ना कि प्रॉफिट निकाल लो, सिर्फ कमीशन ले लिया, वो आपको सिर्फ प्रॉफिट ही है, उसमें लॉस है ही नहीं. लेकिन अगर आप पूरी पूरी इन्वेस्टमेंट लगा के डील उठा रहे हो उसमें आपको लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। उससे ये चीज़ें देख के मुझे ट्रेडिंग का भी था एक्सपीरियंस था लॉस देखने का, तो फिर मुझे इस तरफ भी रुझाना है कि रिस्क तो इसमें भी है, मज़ा तो इसमें भी आएगा खेलने का भी, और बिजनेस है ही रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं उठा सकते आप अच्छे बिजनेसमैन कभी भी नहीं बन सकते। आपको रिस्क उठाना आना चाहिए, रिस्क को फेस करना आना चाहिए ताकि आप अच्छा बिजनेसमैन बन सको, अच्छा बिजनेस कर सको।
3: बिल्कुल आपने सही कहा, और रिस्क टेकिंग ये एक लीडर की स्किल होती है,
4: सबसे मजे की चीज़ होती है।
3: और बिल्कुल ऐसे ही है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि रियल इस्टेट में भी अगर हम ये चीज़ देखें तो हमें बहुत देखने को मिलती है कि अगर हम ब्रिज बन के बिटवीन द कंज्यूमर जिसको एक घर लेना है एंड बिटवीन द सेलर जिसको असल में बेचना है, ये आप ब्रिज बन के अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ अपने कमीशन को अर्न करते हैं तो ये बड़ा सिक्योर एक बिजनेस स्टाइल है। लेकिन उसके बरक्स जो आपने दूसरे बिजनेस की मिसाल दी कि जहां आपको इन्वेस्टर्स के पैसों के जरिए चलना होता है, इन्वेस्टर्स के पैसे लाने होते हैं, उसे प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, उसको सेल करके इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देने होते हैं, उसमें से कमीशन अपना रखना होता है, इट्स अ ह्यूज रिस्क। और आपके मैं ये समझता हूँ कि गर्दन पे एक वो तलवार लटकी ही रहती है कि आपने इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए वापस देने हैं।
4: ऐसे ही है।
3: तो आप क्या समझते हैं इन दोनों स्टाइल ऑफ बिजनेसेस में सबसे बेहतर बिजनेस क्या है, कि ब्रिज बन के एक कंज्यूमर को जो चीज़ ज़रूरत है उसको वो प्रोवाइड की जाए, या एक बड़े स्केल पे खेला जाए, एक बड़े स्केल पे रिस्क लिया जाए?
4: हर काम को शुरू करना इतना आसान नहीं होता। इस स्टेज पे पहुंचने के लिए पहले आपको वो स्टेज से गुजरना पड़ेगा, पहले आपको कमीशन से ही उठना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जब तक आपका नाम नहीं होगा आपको कोई जानता नहीं, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। हाँ, आपके ज़ुबान पे आपको लोग दे देंगे कि चलो भाई ये मेरा जानने वाला है, ये इसके साथ मेरी इतनी अच्छी है तो मैं इसको इन्वेस्टमेंट दे देता हूँ, वरना आपको कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं देता। आपका मार्केट में नाम होगा फिर ही आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। मेरे ख्याल से पहले आपको स्टेज से गुजरना पड़ता है कि आप पहले छोटे से डीलिंग करें, मार्केटिंग करें, फिर उसके बाद उस स्टेज पे आएं। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन वही है कि अगर आप रिस्क के साथ खेलें, क्योंकि बिजनेस का मज़े रिस्क के बगैर नहीं आता।
3: अच्छा, बहुत बड़ी बात आपने की है। और आई थिंक सो जब आप अपने आप को फाइनेंशियली या इतने रिस्क टेकिंग पावर को आप एडमिट कर सकें तो आई थिंक सो तब ही रिस्क लेना चाहिए और तभी बियर करना चाहिए उस रिस्क को। तो इसी के साथ साथ केवान, हम एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जाते हैं और उसके बाद आप हमारी ऑडियंस को ज़रूर बताइएगा कि इन तमाम प्रैक्टिकल एरियाज ऑफ लाइफ से आपने एक अगर हम कहें कि समुंदर को कूजे में आपने बंद करना है तो आप क्या मशवरा हमारे सामीन को देंगे, हमारे सुनने वालों को देंगे अपनी प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल लाइफ से? तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया, चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB की दुनिया।

इसके बाद नूरजहां ने 1960 से 1970 तक के अशरे में पंजाबी फिल्मों के लिए गाने गाए जो सुपरहिट हुए, और इनमें से बहुत से गीतों का शुमार सदाबहार गीतों में होने लगा।

नूरजहां ने 1000 फिल्मों के लिए गीत गाए जिनमें से ज्यादातर मकबूले आम हुए। निस सदी से ज्यादा अरसा तक मौसीकी की सल्तनत और करोड़ों सामईन के दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करने वाली मलका तरन्नुम नूरजहां की शख्सियत के हवाले से एशियाई लेजेंड दिलीप कुमार की अहलिया और माजी की मारूफ अदाकारा सायरा बानो का कहना है, मलका तरन्नुम नूरजहां ने प्लेबैक सिंगिंग में जो उसलूब अंदाज वजा किया वो फिल्मी मौसीकी का लाजमी जुज बन गया। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार अक्सर ये बात करते हुए मलका तरन्नुम का तस्करा करते हैं तो कहते हैं कि दुनिया में फिल्म और म्यूजिक रिकॉर्डिंग की इजादात को मुतारिफ हुए अभी थोड़ा अरसा हुआ था, इसलिए इस तकनीक को सीखने के लिए ना तो इंस्टीट्यूशन से और ना ही फनकारों की ट्रेनिंग का अहतमाम। हैरत अंगेज अमर ये था कि नूरजहां ने इस दौर की जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत हासिल किए बगैर जो काम किया वो आज भी अनोखा और मन

मेरा माही चैन शरीरा, जिंदा है लाहौर, पाइंदा है लाहौर। ए पुत्र हटा दे नई विक दे, की लब दे फिरे बाजार कुड़े। मलका तरुण ने अपने मिली नख्मों से वतन की हिफाजत करती हुई गयूर कौम को पैगाम दिया, सियालकोट तू जिंदा रहेगा, तू जिंदा रहेगा, मेरा सोहना शहर कसूर नहीं। रब दिया रखा, ये वो गीत थे जिन्होंने पाक अफवाज के हौसलों और जज्बों को बढ़ा दिया।

1986 में जब वो शुमाली अमेरिका के दौरे पर थी तो इन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टर्स ने एंजाइना की तकलीफ बताई, जिसके बाद इनकी सर्जरी की गई। सन 2000 में कराची में इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। यूं ये दिलकश आवाज 23 दिसंबर सन 2000 को अपनी महक यहीं छोड़कर हमसे हमेशा के लिए दूर हो गई।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان یوسیپی.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: मौसीकी के सुर और ताल,
2: सुर और ताल,
1: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार,
2: और तकरार,
1: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
2: मस्ती के पास,
1: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: फन, एंटरटेनमेंट, न्यूज, नॉलेज 24/7 ओनली ऑन UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे HOD केमिस्ट्री और साथ लेक्चरर जो हैं मैम अनम से। अब मैं दोबारा मैडम सुमेरा की तरफ बढ़ूंगा, उनसे जानना चाहूंगा। मैडम, जदीद दौर में बहुत मैटर करता है कि MOU और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, क्या इसके बारे में आप इजहार राय करना चाहेंगी?
2: थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन सर। एक्चुअली सेंसिटिव भी है और बढ़िया, जो स्टूडेंट्स आजकल के दौर के समझ फहम रखते हैं वो जब एडमिशन लेते हैं तो वो ये चीज़ बड़ी गौर व फिक्र के बाद कि इस डिपार्टमेंट या इस यूनिवर्सिटी में हमसे पहले स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट और फैकल्टी क्या कर रही है। तो उसमें मैं बताती चलूँ, हमारे पास जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम लोग रेगुलरली विद इन द यूनिवर्सिटी एंड आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, हमारे सारे फैकल्टी मेम्बर्स दे आर अटेंडिंग द वेबिनार्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज दैट आर नेशनल एंड इंटरनेशनल इनसाइड द पाकिस्तान एज वेल एज अब्रॉड। अब्रॉड विजिट पे भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज पे, फंडेड कॉन्फ्रेंसेज पे जाके अपनी यूनिवर्सिटी और अपने स्टूडेंट्स का काम प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेम्बर्स, कुछ फैकल्टी मेम्बर हमारे UCP के डिपार्टमेंट के एज अ फैकल्टी विजिटिंग फैकल्टी मेम्बर सर्व कर रहे हैं इंटरनेशनली। अलॉन्ग विद दैट हमारे डिफरेंट MOUs हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ अलबाना USA में, यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा UAE में है। देन हमारी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल विजिट्स जिसमें इंडस्ट्रियल कोलेबोरेशन में बिन रशीद के साथ है, जिना हॉस्पिटल्स के साथ हैं, नोवावेट फार्मास्यूटिकल्स हैं, दिलावर हुसैन फाउंडेशन है, एंड अलॉन्ग विद दैट पाक एंग्रो इंजीनियरिंग, शफी रेजो एंड TTI लैब्स हैं। और इन MOUs का हमें 3-4 तरह पे बहुत फ़ायदा है। एक तो हमारे स्टूडेंट्स जब उन्हें BS डिग्री में 6-7 सेमेस्टर में इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं तो समटाइम फ्री ऑफ कॉस्ट 2-3 मंथ्स, एंड समटाइम उन स्टूडेंट की कैपेसिटी को देखते हुए दे पे बी टू आर स्टूडेंट। अलॉन्ग विद दैट आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ देयर डिग्रीज उनको वही इंडस्ट्रीज उनके पिछले अपने पास एक्सपीरियंस के बेस पे जॉब्स ऑफर करती हैं। और न सिर्फ ये बल्कि हमारे MS PhD प्रोग्राम्स के लिए रिसर्च फैसिलिटीज़ जो हमारे पास ना हो इन इंडस्ट्रीज़ में हैं, हम अब इन्हीं कोलेब्रेशन के बेसिस पर हम वहाँ से अपनी रिसर्च फैसिलिटीज़ भी समटाइम अपनी पूरी कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में फैकल्टी इंडस्ट्री प्लेसमेंट, हर साल 1-2 फैकल्टी मेम्बर्स फॉर अ वीक आर टू यूनिवर्सिटी हमें ड्यूटी लीव देती है और जाके इंडस्ट्री में कोई ना कोई उनका प्रॉब्लम ओरिएंटेड इशू जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समटाइम इंडस्ट्रियल विजिट्स और जो कि ड्यूरिंग द सेमेस्टर विद द स्टूडेंट्स एज वेल एज विद द फैकल्टी मेम्बर्स दे आर गोइंग टू द डिफरेंट इंडस्ट्रीज टू सी देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वट कैन दे ऑफर अस फॉर आर रिसर्च स्टूडेंट्स आर BS स्टूडेंट्स।
1: जी मैम, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया, बहुत मशकूर हैं, इतनी वजाहत से आपने बयान किया अपने डिपार्टमेंट के बारे में। अब मिस अनम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके जो लैब्स हैं उनके बारे में हमारे सुनने वालों को कुछ बताइए।
3: सर थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच अ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग अ गुड इनसाइट टू द डिपार्टमेंट। सर द लैब्स दैट वी हैव बेसिकली एज डॉक्टर सुमेरा ज़ैफ हैज़ ऑलरेडी मेंशनड, वी आर कैटरिंग बोथ द बायोकेमिस्ट्री एंड द केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स। सो वी हैव टॉप नॉच, up to date, the most facilitated labs over here in the department in the University of Central Punjab, both regarding the chemistry and the biochemistry sections over here. So basically the instrumentation that we have include all of the basic equipment that is required for the students to perform their lab activities in the chemistry department. Other than that, when we talk about most advanced instruments or the elevated instruments, we have multiple instrumentations. For example, for the characterization, we have an instrument HPLC available over here. Other than that, we have multiple spectrophotometers. We have multiple apparatuses that is used for the reduction of different type of extraction of different chemicals. Other than that, if we are not doing anything over here, that is, the students are not able to cater over here, we have multiple collaborations with our international universities, with the national universities in Pakistan as well. Our faculty members are working hand in hand with the faculty, both at the national level and the international level. So the students, their needs in the terms of research, in the terms of when they're doing their thesis, when they're doing their lab experimentation, their needs are catered very carefully, either inside the premises of the department and outside of the department as well. And all of the students who have done their research do their research in the time frame that has been given to them. So as far as the lab of the department is concerned, we are providing the top-notch facilities to the BS graduates and the MS PhDs as well.
1: Ma'am, aap kuch mazid kehna chahengi ispe?
2: सर बस यही इसकी एग्जांपल दूंगी कि सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह और ये जो हमारे 16 पीएचडीज हैं अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती तो हम इनको इन टाइम इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि कोविड की वजह से 6 to 7 इयर्स पे गए हैं लेकिन उनमें से मोस्टली वो हैं जिन्होंने देयर फोर्थ और फिफ्थ ईयर में पीएचडी कंप्लीट कर दी अल्हम्दुलिल्लाह और ये सब कुछ इसीलिए है कि हमारे पास FOST एंड UCP में फैसिलिटीज़ सारी हैं और अगर कोई नहीं होती तो हम इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग बट हम अपनी जो हमारी कोलैबोरेशंस और इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं हम उसको बेस बनाकर उनसे इन कोलैबोरेशन उनसे वो करेक्टराइजेशन और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करा के अपने स्टूडेंट्स को टाइमली कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्रीज की तरफ ले जाते हैं.
1: वेरी वैलिड पॉइंट मैम. इसी के साथ हम एक और ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं. कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 92.6 UCPK.

0: ویلکم بیک معزز سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم FM 92.6 یو سی پی کی دنیا سے بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہفتہ وار پروگرام ہے. آج جس ڈپارٹمنٹ کی باری ہے اس کا نام ہے ڈپارٹمنٹ آف بیسک اینڈ اپلائڈ کیمسٹری. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ایچ او ڈی ڈاکٹر سمیرا زیب, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مس انم طاہر. چلیں بغیر کسی وقت ضائع کیے ہم دوبارہ اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں, اور میں پوچھنا چاہوں گا میم سمیرا زیب سے, کیونکہ ایچ او ڈی ہیں, میں مجھے اب یہ بتائیے گا یہ جو دور ہے یہ بڑا کٹ تھروٹ دور ہے, اس میں بہت زیادہ کمپٹیشن چل رہا ہے. لاہور میں اتنے ادارے ہیں, اتنی یونیورسٹیز ہیں, وائی دا اسٹوڈنٹ شوڈ آپٹ فار یور ڈپارٹمنٹ فرسٹ اینڈ یو سی پی؟ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف دوڑتے چلے آتے ہیں؟
1: تھینک یو سو مچ سر. اسٹوڈنٹس آج کل بڑا میٹر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیوں ہم کسی بھی یونیورسٹی کو, اگر فیس اسٹرکچر سملر ہے, ڈگری سملر ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں یا گورنمنٹ میں, کوئی ڈفرینس کا ہے؟ جیسے مس انم نے بتایا کہ ڈپارٹمنٹ آر فیکلٹی آر یونیورسٹی از لائک سیکنڈ ہوم ٹو ہر. سملرلی ہمارے پاس کچھ فیکلٹی ممبرز ہیں جو کہ 8 سے 10 سال ہو چکے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, یا جو ویری اسٹارٹ سے 2015 سے جب سے ڈپارٹمنٹ بنا یا جب سے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ بنا, سارے وہ موسٹلی وہ فیکلٹی ممبرس ہیں جنہوں نے بنیادیں ڈالیں ڈپارٹمنٹس کی, اور وہ یہاں پر تب سے ابھی تک ہیں. اس کا مطلب ہے کہ موسٹ سیٹسفائنگ کنڈیشن ٹورڈز دا ڈپارٹمنٹ, ٹورڈز دا یونیورسٹی ہیں ہر ٹرمز میں, فیکلٹی ممبرس میں. لائک کووڈ میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, اور یہ اسٹوڈنٹس کو آل دو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے وہ یہ ان چیزوں سے انہیں شاید غرض نہیں یا وہ جانتے نہیں کہ ہر روز آئے دن اگر ٹیچر بدلتا رہے ایک سیمسٹر وائز, یا سال میں ایک دو دفعہ ٹیچر چلے گئے آرگینک کے, بایو کیمسٹری کے, ان آرگینک کے, انالیٹیکل کے, فزیکل کے, اسٹارٹ سیمسٹر کسی اور ٹیچر نے کیا, دین انہوں نے اینڈ آف سیمسٹر پیپر کسی اور ٹیچر نے بنا لیا, مارکنگ کسی اور نے کر لی, تو یہ والی چیزیں الحمد للہ ہمیں یو سی پی میں, ایف او ایس ٹی میں یا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں کبھی فیس نہیں کرنی پڑی. کبھی کسی ٹیچر کو ادر دین کے کبھی انہیں پروفیشنل گروتھ یا فیملی ٹرمز کے ود فیمیلز کو ہسبینڈس کے ساتھ کسی اور سٹی یا کسی اور کنٹری شفٹ نہیں ہونا پڑتا, دے نیور وینٹ فار کہ ہم کسی اور یونیورسٹی کو آپٹ کریں.
0: مس انم, آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا. بسائڈ ٹیچنگ رائٹ وچ از یور پرائمری رول, کیا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی فن پارٹ بھی ہے؟ ایسا بھی کوئی ایلیمنٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس انجوائے بھی کریں, پڑھیں بھی, اور ساتھ ساتھ لطف اندوز بھی ہوں؟
2: سر تھینک یو سو مچ. آئی تھنک دا آڈینس وڈ بی الاٹ انٹرسٹڈ ان دس ٹائپ آف اے کوشچن, بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ ایوری بڈی ریزونیٹس ود. ون تھنگ دیٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایڈ فرسٹ ان دا کنٹینیوشن آف وٹ ڈاکٹر سمیرا واز سیئنگ, شی ہیز مینشنڈ ان اے ویری گڈ ڈیٹیل دیٹ وائی کیمسٹری اینڈ وائی لائک آئی ایم کمنگ ٹو ٹورڈز دا فن پارٹ, بٹ لیٹ می کیٹر ٹو دیٹ. آئی وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ فرسٹ. There is one thing that there is a season that I have seen so many times, and I think that my audience must have seen that as well. That is Sherlock Holmes. He has basically acted as a forensic scientist, and that show has been so fascinating. You watch one episode and you go back to it again and again and again. I myself was wanting to see the next season. I desperately waited for that. So there are nieces and nephews at my home who asked me this question, that what is that Sherlock Holmes had studied? What is it that he was doing? So this was something that I was proud of, and I was answering them that he is basically a chemist. His roots belongs to chemistry. So basically, chemistry is something that resonates with everything around us. It's a core of all of the sciences. So you name any of the field that may seem boring to you, and we still have chemists in them. You name a field that is a very fun, activity-based thing, that industry that has something that you want to go to, it also has chemists in them. So, like, other than the coming to the second part of your question, other than the academic activities that we have going on, other than that, we have multiple fun-based activities. We don't want to bore our students. The thing is this, we have this concept in Faculty of Science and Technology, and specifically this is the core of our department. We don't teach science, we live science as well. So when we're living science, we make sure that our students are living every aspect of it, not only the academia. So we make sure by indulging students into like multiple, we were the pioneers of starting the annual dinner in the Faculty of Science and Technology. Annual dinner has been arranged for the student who are going to be an ongoing batch. This has been given for the student who are in their final semesters to the students who are ongoing. Other than that, our students have multiple type of other activities in the university. For example, recently we have Faculty of Science and Technology, and under the umbrella of Engineering Department, we have arranged an event that was named as FEST. It was a festival where specifically the Department of Basic and Applied Chemistry organized its own magic show, and the audience applauded it a lot. It was a hit even in the last years and in this year as well. Other than that, when we talk about multiple other things, I will sum it up by telling you that we have Takhleeq incubation and ideation over here. Our student also presents abstract. They are also participating in poster presentation. There is a long list. Inshallah, in the coming sessions, we're going to be sharing more as well.
0: Very well explained. Let me add to it, as a famous saying goes, that your students have their chemistry matching up with your teachers, isn't it?
2: Yeah, exactly. Yeah. Yes.
0: It's like that.
2: Yes.
0: So, ma'am se mera, main aapse puchna chahunga ki jab aapke students faragul tahsil ho jate hain, jab wo graduation kar lete hain, to kya aise iqdamat hain jo aapne apne department mein uthaye hain, wo ensure karte hain ki aapke students jab job market mein jaye to unko haathon haath qabool kiya jaye.
1: Oh, thank you so much for this question, sir. बेसिकली स्टार्ट ऑफ डिग्री से हम उनको, जब ये स्टूडेंट बीएस में आता है तो 3-4 सेमेस्टर गुजारने के बाद जब उसको आइडिया हो जाता है कि जब मैं ये डिग्री, कोई भी डिग्री और स्पेसिफिकली केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री की डिग्री लेकर मार्केट में निकलूंगा और मेरे साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में यही डिग्री लेकर स्टूडेंट निकलेगा तो कम्पीट करना पड़ेगा ज़्यादा सैचुरेशन की वजह से. और जब कम्पीट करना पड़ता है तो ऑब्वियसली सिर्फ डिग्री चेक नहीं होती. और ये स्टार्टिंग मैंने यहाँ से किया था कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स ख़ुद भी ये सब काम एक्स्ट्रा करिकुलर अदर देन हमारे लेवल पे, जब हम सीनियर्स एसोसिएट असिस्टेंट या प्रोफेसर लेवल पे आ जाते हैं तो हमारे लिए एक्स्ट्रा करिकुलर अदर देन टीचिंग और रिसर्च ही हो जाती है कि हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर सेमिनार, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेज और ऐसे सारे इवेंट्स अरेंज करें या करवाएं, वहाँ लेक्चर टॉक दें. इसी तरह हम अपने स्टूडेंट्स को, जब वो फिफ्थ, सिक्स या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आते हैं सेमेस्टर्स के बाद, तो हम उन्हें ये गाइड करते हैं कि अदर देन योर बेसिक डिग्री जो आप किसी भी हमारी यूनिवर्सिटी से लें या किसी और की, आपका जो CV होगा वो जांचा जाएगा कि आपने कितनी कॉन्फ्रेंसेस, कितने एब्स्ट्रैक्ट या कोई भी ऐसा कोई पेटेंट या कोई आइडिया आइडिएशन की तरफ कहीं टॉक, कोई वेबिनार, सेमिनार विद इन द यूनिवर्सिटी या आउटसाइड द यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान या ऑनलाइन. अब जब से कोविड गुजरा है तो हमारे मोस्टली सेशंस या कॉन्फ्रेंसेज जो कि हाइब्रिड मोड में हो रही हैं, ऑनलाइन भी एज वेल एज फिज़िकल भी. तो अगर स्टूडेंट ऑब्वियसली आउटसाइड द लाहौर ट्रेवल नहीं कर सकता तो वो ऑनलाइन मोड के थ्रू सर्टिफिकेशन ले लेता है. ये सारे वो स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम अपने स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि आप जब BS डिग्री लेने के बाद या समटाइम MS डिग्री लेने के बाद बाहर निकलेंगे तो ये सारी डिग्रीज तो बाकी एप्लीकेंट्स के पास भी होंगी, लेकिन यू शुड बी हैविंग सम एक्स्ट्रा करिकुलर इन योर CV दैट शुड मेक योर CVs बल्क अदर देन CGPA एंड डिग्री.
0: मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या है ऐसी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को देती हैं या उनमें इनकलकेट करती हैं, इंस्टिल करती हैं, कि जहाँ जाते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ UCP की छाप लेके जाते हैं.
2: Sir, as I have already mentioned that we don't teach sciences, we don't teach chemistry, we live chemistry as well. So our most important thing that we want to inculcate in our student is this, that their concept should be clear, but they should be able to advertise, to market those concepts when they go into the professional life. So to ensure that, we have our system is very properly organized. Our courses, our curriculum is properly broken down into segments that ensures that the students are not just cramming the books. So we have very, very planned activities going on throughout the semester. We have assignments, we have project-based activities. We also have lab activities where we don't, as a teacher, we are not the only person who is standing over there and just babbling all the stuff of chemistry to the students. We make sure that the students are also participating. We sometimes reverse roles in the class as well. Other than that, we make sure that we take them on field as well. They are in the classes. We also take them to industrial visits where they see that this is going to be their future one day, and this is where they're going to be cultivating their knowledge of chemistry, actually. So there are multiple things that we are doing to make sure, to ensure that the student knows that this is going to be his place in the future, inshallah.
0: Very rightly said. Ma'am, ek cheez puchna chahunga. Jaisa ki aap jante hain, ek bahut aaya hua hai downward spiral, jo ki pure sciences mein hai. Physics hai, chemistry hai, maths hai, zoology hai. To aap kaise ikdamat kar rahi hain jo ki is cheez ko mumkin banayengi ki aapke students zyada se zyada na sirf yahan aapke department mein aaye balki aap unko retain bhi kar sake.
1: Okay sir, ye aajkal na hamara last 2 years se jab se ye IT ka bahut zyada rujhan ho chuka hai, jiski wajah se hamari bilkul aapne well said ka ye बेसिक साइंसेज का, खासकर जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड मैथ्स, ये सारे सफ़र कर रहे हैं. हमने कुछ इस तरह की इकदाम किए हैं कि ना सिर्फ बच्चों को अवेयरनेस दी है कि जॉब मार्केट क्या है कल को. अब जैसे हमारे पास आजकल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ काफ़ी सारे चल रहे हैं, उस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में हमें क्वालिटी कंट्रोल है या एकेडेमिया है, क्लाइमेट चेंज में तो हम ये जो गैस प्रोडक्शन, क्लीन वाटर जो कि नेसेसिटी है हमारी एनर्जी प्रोडक्शन, या अब ये स्टूडेंट्स को अवेयरनेस कहाँ पे दी जा सकती है या देते हैं. फेस्ट में हमारे बड़े वेल इक्विप्ड स्टूडेंट्स को हम जब FSC या मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स जब हमें विजिट करते हैं तो हम उनको लैब्स में एज वेल एज प्रैक्टिकली परफॉर्म करके ये थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं, उनकी अटेंशन सीख करने की कोशिश करते हैं. अलॉन्ग विद डैट कुछ अकेडमीज़ और कॉलेजेस में हमारे जूनियर टीचर्स विजिट करके उनको ये गाइडलाइन देते हैं कि अगर मेडिकल या इंजीनियरिंग में नहीं होता तो दे कैन ऑप्ट केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री फॉर दिस रीज़न कि हमारे पास जो इस वक्त में फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, टॉक्सिकोलॉजी है, ये सारी हमारी जॉब मार्केट हैं, तो हमें इसको फोकस करना चाहिए और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को फेस करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए.
0: जी मैम, मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा और एक और सवाल भी इसमें ऐड कर दूँ मैं कि हर करेक्टर का हिस्सा ना सिर्फ पढ़ाई होती है, तदरीस होती है, पर उसके साथ साथ उसमें मोरालिटी और एथिक्स भी होते हैं. इस पे भी मैं चाहूँगा पहले आप रोशनी डालिए, फिर मैं डॉक्टर सुमेरा से चाहूँगा कि आखिर में वो रोशनी डालें और इस तरह हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुँचाएंगे.
2: सर थैंक यू सो मच. सो वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड ओवर देयर इज दिस दैट वाइल सीकिंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स वी आर इंश्योरिंग ऑल ऑफ द स्टेप दैट आवर वर्दी HOD हैज मेंशनड. But other than that, we are also of this view that the times are changing, the world is changing. So to keep up with that, we are also modernizing our curriculum as per the guidelines of HEC. Also, we are introducing some courses that are ensuring that we are not only teaching chemistry to the students, we are also making them well equipped with things that are going to be in line with the IT and with the technology development, with where they can make sure that by having a chemistry degree, they can work remotely as well. So we are trying to make them equipped with the ongoing time as well. Other than that, there is a thing that is ensured in our department when we talk about the morality of the department is this, that we show them this by example, by being an example. We have, as teachers, as faculty members, we attend multiple meetings with them as students in a collection where if your head of department, where your senior members are showing a respect, are showing a proper decorum to the junior ones, this sets a very good example for the students to see that there's a proper hierarchy. No matter wherever you sit, you have a say, you have a word, and in the proper limitation, in the proper obedience criteria, you can say anything that comes to your mind. So by setting the example by ourselves, we are ensuring that the students follows our footsteps.
0: Very right. Ma'am, Sumaira, I would like to ask you, today is the time of entrepreneurship. So tell us, do you take your students in startups too? Do you offer them
1: opportunities? Yes, absolutely. As Anam previously mentioned, it is a Takhleeq Incubation Center in UCP. उसमें हर साल या 6 माह बाद आइडिएशन का कंपटीशन, कुछ वो प्रोजेक्ट्स पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं एंड देन उनके फेज़ 1, 2 एंड 3 के बाद उनके फाइनल प्राइसेस लिए जाते हैं. और ये हमारे लास्ट ईयर के दो पोजीशन विनिंग थी, जिसमें हमारी तख्लीक इनक्यूबेशन आइडिएशन में एक हर्बल टी थी जिसको सेकंड पोजीशन मिली थी थ्रू आउट आइडिएशन, जिन्होंने ऑल थ्री राउंड्स में बेस्ट परफॉर्म किया था। एंड उसके अलावा एक लेदर था फ्रॉम द मशरूम्स, बिकॉज टिपिकली लेदर जो है उसमें आफ्टर आप कितना भी महंगा लेदर यूज़ कर लें जूतों में, जैकेट्स में, बैग्स में, लेकिन उनमें ये होता है कि आफ्टर 2 to 3 years वो ख़राब हो जाता है लेदर, जितना भी एक्सपेंसिव होगा। लेकिन कुछ मशरूम बेस्ड लेदर्स हम लोगों ने उसमें जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसको ये किया कि इवन वो 5 to 10 years तक उसका टेक्सचर या कलर ख़राब नहीं होता। तो ये दो प्रोजेक्ट्स हमारे उसमें गए और इनको इन्होंने प्राइज भी विन किया। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अपने इन्हीं, जब हम 7th-8th semester में उनको रिसर्च कराते हैं बीएस की, तो हम उनमें से समटाइम पब्लिश भी करते हैं और वो समटाइम अच्छे जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। जब वो अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स जो कि अब्रॉड अप्लाई करते हैं फॉर देयर मास्टर प्रोग्राम्स पोस्ट ग्रेजुएट में, मास्टर्स से पीएचडी में, तो ऑब्वियसली जब मास्टर स्टूडेंट आता है तो वो हर डिपार्टमेंट का पब्लिकेशन के साथ जाता है और वो पीएचडी बाहर आसानी से हासिल कर लेते हैं। और मास्टर्स आपको पता है भी हमारा रिसर्च एक्सपीरियंस है, लेकिन हम कोशिश करते हैं केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में बीएस लेवल पे जो रिसर्च हम उन्हें कराते हैं दैट शुड बी फॉर दिस के हम उन्हें पब्लिश करा सकें। और स्टूडेंट जब बीएस करके यहाँ से निकलता है तो एटलीस्ट 1 आर्टिकल वो पब्लिश करा के साथ ले जाता है जो कि उन्हें मास्टर प्रोग्राम में स्कॉलरशिप लेने में इंटरनेशनली हेल्पफुल होते हैं। और इसकी एग्जांपल देना चाहूँगी छोटी सी कि हमारे इस वक्त में बीएस के स्टूडेंट इंटरनेशनली मास्टर प्रोग्राम में मास्टर स्कॉलरशिप्स जो कि फुली स्कॉलरशिप फंडेड स्कॉलरशिप्स में चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, बीएस केमिस्ट्री एज वेल एज बीएस बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स मोर देन 7 स्टूडेंट्स हमारे इन 5 से 6 मुल्कों में, और जो कि ये नहीं क्या डेवलप नहीं है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, जर्मनी और कोरिया में हमारे 8 स्टूडेंट्स इस वक्त मास्टर प्रोग्राम में इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में, इन सारी कंट्रीज़ में एडमिशन ले चुके हैं।
0: मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि आप बताइए कि आप अपने स्टूडेंट्स को जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे।
2: Sir, I would like to mention it to them that the world is your canvas. It is something that you have the ability to paint as per your own aesthetics. So do take your mark, do take whatever is in your head, do whatever is in your heart as well. By the combination of your heart and your mind, your heart and your head, you can do wonders. You can reach for multiple horizons. So don't hesitate in reaching anything that you wish for.
1: I would request students to stay out of their comfort zone. That's why they must be more productive and some honest people that are we are bringing them to real world.
0: The gist of both of your messages is, as I can infer from here and I can interpret it, that sky should be the limit.
1: Yeah.
2: Yes.
0: Right? So, Madam Sumaira Zeb, Dr. Sumaira Zeb, Miss Anam Tahir, aapki tashreef aavri ka bahut shukriya. Isi ke saath, mauze samain, hamara aaj ka program ikhtitam ki taraf badhta hai aur agle hafte betabi se hamara intezaar kijiyega. Hum ek naye program ke saath aapki khidmat mein hazir honge. Jaate jaate, Pakistan, जिंदाबाद।

पहले पहल कहा जाता था, जिसने बाप के जूते नहीं खाए उसकी किस्मत नहीं चमकी। यह बात इस कदर दुरुस्त समझी जाती थी कि हर बाप इस फर्ज को लाजमी पूरा करता था ताकि औलाद की किस्मत जरूर चमके। मगर जूं जूं माशरे में तब्दीली रूनमा हुई, बच्चों को जूते खाना पसंद नहीं रहा। खामोश रहने वाले बच्चे अपनी शख्सियत में किस कदर पेचीदगियां समेट पाए, लफ्जों में बयां से परे है। यह कहानी अहमर की है। वो तन्हाई पसंद बच्चा था, उसका दिल हमेशा बाप की तरफ से डरा रहता था। सईद साहब के बच्चे उनसे बहुत डरते थे, यहां तक कि 3 शादीशुदा बेटों के साथ सईद साहब बड़े फखर से रहते थे। मजाल थी कि सईद साहब के सामने कोई ऊंची आवाज से सांस भी लेता। तीनों बेटे वकार, मुनव्वर और अहमर अलग घरों में रहना चाहते थे, मगर बाप की सख्त तबीयत के बायस उन्हें खामोश रहना पड़ता। तीनों लड़कों ने चूंकि बचपन में सईद साहब से इस कदर जूते खाए थे कि उनकी गर्दन अपने बाप की जानिब उठती ही ना थी। फिर वो दिन आया जिस दिन तीनों बेटे सईद साहब की चारपाई के पास आजी से खड़े थे। सईद साहब बहुत बीमार थे, उन्होंने अपने बेटों को अपने पास खास मकसद से बुलाया था। तीनों बेटों में से किसी को याद नहीं था कि आखिरी बार कब वो सईद साहब के कमरे में आए थे। सईद साहब के होते हुए उनकी गैर हाजिरी में उनका कमरा बंद ही रहता था। बिस्तरे मर्ग पर बाप को देखकर तीनों बेटे अफसुर्दगी से नजरें झुकाए खड़े थे। सईद साहब की आंखों में आंसू थे, उनके आंसू अहमर ने किनारों से बहते हुए तिरछी नजर से देखे थे। उन्होंने अपने बेटों को पास बैठने को कहा तो तीनों में से कोई भी ना बैठ पाया था। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे आंखों आंखों में एक दूसरे से पहले आप कह रहे हो। फिर वही हुआ जो होना था। गाड़ी निकल गई और सईद साहब न जाने जिंदगी के कितने राज और दर्द अपने साथ लिए दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसे माहौल में रहने वाले बेटों में भी अपनी कैफियत और जज्बात को अंदर ही अंदर रखने की बीमारी जड़े पकड़ चुकी थी। तीनों ही अपने बच्चों से इंतहाई सख्ती से पेश आते थे, मगर बाप की मौत के बाद अहमर को अक्सर अपने बाप का आखिरी जुमला सताने लगा। वो अक्सर सोचता, क्यों हम में से कोई भी आखिरी वक्त में वालिद साहब के बिस्तर पर ना बैठ सका। वालिद साहब की आंखों से गिरने वाले आंसू मौत की तलखी के बाइस थे या उनकी वजह उनकी अधूरी तमन्ना थी जो अहमर के दिल में बाप की मौत के साथ पैदा हुई थी। अहमर का बेटा आफताब 10 साल का था। घर के माहौल के बाइस वो जान चुका था कि जैसे ही वालिद, चचा या दादाजी घर आए तो अपने कमरे में खामोशी से छुपकर बैठ जाना है। कुछ अरसे में तीनों भाइयों ने अपने घर अलग अलग कर लिए और सईद साहब की तरह घर के चीफ बन गए। मगर अहमर को अपने बाप की बेबसी सता रही थी। वो उनकी तरह मरना नहीं चाहता था, ऐसा शख्स जो मौत के वक्त भी अपनी औलाद का लम्स महसूस न कर सका। मुनव्वर और वकार अहमर की तरह नहीं सोचते थे। मुनव्वर ने जब अपने बेटे को फेल होने पर बुरी तरह पिटाई लगाई तो अहमर ने उसे रोकने की कोशिश की। अहमर को समझाते हुए मुनव्वर ने कहा, घोड़े को लगाम लगाकर नहीं रखेंगे तो काबू से निकल जाएगा। आफताब ने भी यह पिटाई देखी थी। अहमर आफताब की आंखों में खौफ महसूस कर सकता था। इस वाके के कुछ ही हफ्ते बाद अहमर नए घर में चला गया। वो अक्सर बच्चों से मुतल्लिक पढ़ता रहता था। वो समझ चुका था कि लगाम घोड़े को लगाई जाती है, एक इंसान तो मोहब्बत का भूखा होता है। उसने सोचा वो अलग घर में अपने बच्चों को खुशगवार माहौल देकर उनकी आंखों में बसे खौफ को दूर कर देगा। मगर घर बदलने से इंसान अपनी जात को तब्दील नहीं कर सकता। जाहिर को बदलना बातिल को बदलने से कहीं ज्यादा आसान होता है। अहमर ने अपने बच्चों से सख्ती करना बहुत कम कर दिया। वो अक्सर सोचता था कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार अपने बच्चों से करे। उसके अंदर शदीद ख्वाहिश जन्म लेने लगी थी कि वो अपने बेटे आफताब को बताए कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो उसे बुलाता, उससे स्कूल से मुतल्लिक पूछता तो बच्चा खड़े खड़े जवाब देता और वापसी के लिए मुतमन्नी नजरों से देखने लगता। 10 साल आफताब ने अपने बाप को यही करते देखा था। सईद साहब की मौत भी उनके असर को खत्म ना कर सकी थी। घर का माहौल वैसा ही था जैसा उन्होंने बनाया था। वक्त गुजर रहा था
मगर अहमर की तमन्ना थी कि हसरत की तरह उसके वजूद को मुट्ठी में लिए थी। वो अपने बेटे से गले लगना चाहता था। अहमर को याद था वालिद से जिस दिन बहुत ज्यादा मार पड़ती तो उसकी माँ बहुत प्यार से गले लगाकर अहमर से कहती, बेटा मार तो गलती करने पर पड़ेगी ही, वैसे सईद साहब तुमसे प्यार बहुत करते हैं। वो दिल ही दिल में कहता, प्यार? उन्हें पता भी है कि प्यार क्या होता है। मोहब्बत और खौफ एक जगह नहीं रह सकते। किसी इंसान से या तो खौफ महसूस किया जा सकता है या फिर मोहब्बत। ये जानने के बावजूद वो आफ्ताब की आंखों में नजर आने वाले अपने लिए खौफ को खत्म नहीं कर सका था। अहमर कभी अपने बाप से प्यार महसूस नहीं कर सका था, लेकिन उनकी मौत पर आंसुओं की वजह वह समझ नहीं पाया था। वो उसकी शख्सियत पर गहरे असरात रखते थे। वो कब बड़ा होकर उन जैसा हो गया पता ही ना चला। अहमर ने आफ्ताब पर कभी हाथ नहीं उठाया था, मगर उसकी बेटी आलिया और आफ्ताब उसके ऑफिस से आते ही कमरे में छुप जाते। उनकी आवाज धीमी हो जाती। अगर किसी वजह से वो उन्हें अपने पास बुलाता तो वो अक्सर बिस्तर के पास खड़े खड़े उसकी बात सुनते। पहले तो उसे इन बातों का एहसास न था, मगर बाप की मौत और उस आखिरी मंजर ने अहमर को बेचैन कर दिया था। दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान भी नहीं था जिससे वो अपनी दिली कैफियत बयान करता। उसने काफी दिन तक सोचने के बाद बच्चों को छुट्टियों पर मरी ले जाने का सोचा, जहां वो उनके साथ एक ही कमरे में रहे और उनसे इजहार मोहब्बत कर सके। मगर वो मरी में ले जाने के बावजूद अपने और बच्चों के दरमियान खौफ की दीवार को कम न कर सका। जिस कदर हिचकिचाहट बच्चे महसूस करते थे, वो उनसे भी ज्यादा ऐसी ही हिचकिचाहट का शिकार था। आखिरकार उसने एक डायरी में खलील जिब्रान की एक नज़म के बाद खतूत लिखने शुरू किए। नज़म कुछ यूं थी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वो जिंदगी की खुद तमन्नाई के बेटे हैं और बेटियां हैं। वो तुम्हारे जरिए आए लेकिन तुम में से नहीं, और अगरचे वो तुम्हारे साथ हैं लेकिन तुमसे ताल्लुक नहीं रखते। तुम उन्हें अपनी मोहब्बत दो लेकिन ख्यालात नहीं, क्योंकि उनके पास अपने ख्यालात हैं। तुम उनके जिस्मों को घर दो लेकिन रूहों को नहीं, क्योंकि उनकी रूहें आइंदा के घरों में मकीन हैं, जहां तुम नहीं जा सकते, अपने ख्वाबों में भी नहीं। तुम उन जैसा बनने की जिद्दोजहद करो, लेकिन उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करो, क्योंकि जिंदगी ना पीछे को जाती है ना गुज़िश्ता कल में अटकी हुई है। तुम वो कमान हो जिससे तुम्हारे बच्चे जिंदा तीरों की तरह आगे को फेंके गए हैं। कमानदार लामतनायत की राह पर निशान ढूंढता है, और वो खुदा अपनी ताकत से तुम्हें झुकाता है ताकि उसके तीर तेजी से और ज्यादा दूर जाएं। मैंने जब से ये नज़म समझी है, मैं जान चुका हूं कि बच्चे कोई जानवर नहीं कि उन्हें हम अपनी मर्जी से हांके। उन्हें खौफ से हम सर्कस के लिए तो तैयार कर सकते हैं, मगर जिंदगी के सफर को खुशगवार बनाना खौफ से मुमकिन नहीं। मैं अपने बच्चों की आंखों में अपने लिए खौफ नहीं, मोहब्बत देखना चाहता हूं। मोहब्बत वो जज्बा है जो एहतराम को जन्म देता है। वो तारीख लिखकर सबसे ऊपर लिखता मेरे बच्चों के लिए, जो दुनिया की बेश कीमत नेमत है। फिर वो अपनी मोहब्बत का दिल खोल कर इजहार करता, उन्हें बताता कि वो उनकी किस किस हरकत को सबसे ज्यादा पसंद करता है। आफ्ताब 17 साल का हो चुका था जबकि आलिया 14 साल की थी कि अहमर का कार एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटल में था। आफ्ताब जब कॉलेज से आया तो उसे अम्मी ने बताया कि कुछ देर पहले ही फोन आया था। वो जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि चचा का फोन आया। उन्होंने आफ्ताब को अहमर का मेडिकल कार्ड लाने को कहा, जो बिल की अदायगी में मदद के लिए अहमर को उसके ऑफिस वालों ने दिया था। आफ्ताब ने अम्मी से पूछा तो वो कमरे में ढूंढने लगी। आफ्ताब और आलिया भी मेडिकल कार्ड को ढूंढने लगे तो आफ्ताब को बेड के नीचे के तराज में एक खूबसूरत सा डब्बा नजर आया, जो चॉकलेट का था। उसने हैरत से उसे खोला तो उसमें उसे एक डायरी नजर आई। डायरी में लिखा था मेरे बच्चों के नाम। उसे तजस्सुस महसूस हुआ कि पापा ने इसमें क्या लिखा है। यह डायरी खतूत का एक मजमुआ थी। आफ्ताब खत पढ़ता जाता
और रोता जाता। अम्मी और आलिया उसके पास आईं, उन्होंने भी डायरी में लिखे खत देखे तो हैरत से देखते ही रह गए। वो शख्स जो इंतहाई संजीदा और तन्हाई पसंद नजर आता था, रिश्तों में मोहब्बत का किस कदर मुतमन्नी था, वो आज समझ पाए थे। एक एक खत एक बाप की लामतनाई मोहब्बत का समंदर था, जिसमें उसने उन लम्हों को कैद करने की कोशिश की थी जिनको वो हकीकत में ना जी पाया था। उसने एक खत में लिखा, मेरे बेटे आफताब, तुम्हें क्या मालूम कि जब तुम अपनी कामयाबी का दबे लफ्जों में मुझे बताने की कोशिश करते हो तो मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हें अपने गले से लगाकर कहूं, तुम ही मेरा फख्र हो। आफताब अपने आंसुओं को साफ भी ना कर पाया था कि उसके चचा का फोन आया। आफताब बेटा, तुम आ क्यों नहीं रहे? हमें हॉस्पिटल की तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करना है। उसने रोते हुए कहा, जी चचा जान, आ रहा हूं। वो खतों में से पहला खत पढ़ने लगा, जहां खलील जिब्रान की नज़म के बाद कुछ बातें और फिर पहला खत लिखा गया था जो कुछ साल पहले का था। वो पढ़ने लगा, जिसका उनवां कुछ यूं था, मेरे बच्चों के नाम जो दुनिया की बेश कीमत नेमत है। फिर रोते हुए आफताब ने यूं पढ़ा, मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी तुमसे मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया। बाप कभी भी मां से कम प्यार नहीं करता, मगर वो मर्दाना खोल को तोड़ नहीं पाता। कुछ तोड़ भी लेते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं हुआ। बहुत कोशिश की कि तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह पेश आऊं, अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, मगर मैं सईद साहब की तरह अहमर साहब ही बना रहा। मेरा जी चाहता था कि मैं जब ऑफिस से आऊं तो मेरे बच्चे भागकर मुझसे लिपट जाएं। वो लम्हा मेरे लिए कयामत से कम नहीं होता था जब तुम लोग छुपकर कमरे में बैठ जाते थे। मैं जो कह नहीं पाया वो लिख रहा हूं, क्योंकि मेरा दिल जज्बात की शिद्दत से लबालब भर चुका है। अगर अब इजहार नहीं किया तो शायद फट जाएगा, इसलिए कागजों का सहारा ले रहा हूं। मैं अपने बाप की तरह अधूरी तमन्ना लिए इस दुनिया से नहीं जाना चाहता, इसलिए मेरी तमन्ना है कि तुम खुद ही ये खत देख लो और मुझसे लिपट के कह दो कि मेरी मोहब्बत को महसूस करते हो। मेरी बेटी, तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारी मुस्कान ही मेरी जिंदगी है। तुम जो मुझे देखकर हंसना रुक जाती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मगर मैं कह नहीं पाता। मेरे जज्बात तो कैद है, मगर तुम लोगों के क्यों कैद हो गए? मेरे बच्चों, रब तुम्हारी कोई तमन्ना अधूरी ना छोड़े। आफताब और आलिया हसरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आफताब ने आंसू साफ करते हुए कहा, सच में हमने क्यों मोहब्बत में पहल नहीं की? पापा तो हमेशा शफकत से ही पेश आते थे। आलिया ने अफसरदगी से कहा, शायद हमारे जहन भी दादा जान के खौफ में जकड़े हुए थे। सोचो, हम पर इस कदर असर है तो फिर पापा पर दादा जान का किस हद तक असर होगा? आफताब ने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं तो जाते ही पापा से लिपट जाऊंगा। आफताब और आलिया हॉस्पिटल पहुंचे तो उनके चचा और ताया उनके मुंतजर थे। आफताब ने कार्ड ताया जान को दिया और खुद उस वार्ड की तरफ चल पड़ा जहां अहमर को रखा गया था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि पापा से लिपट कर कहेगा वो भी उनसे बहुत प्यार करता है। आलिया का भी यही हाल था कि डॉक्टर ने उन्हें रोक दिया। आफताब ने कहा, मैं मरीज का बेटा हूं, मुझे अंदर जाने दीजिए। चचा ने आफताब से कहा, अहमर को जब हॉस्पिटल लाया गया तो 15 मिनट के बाद ही वो हम सबको छोड़ गया था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे बताएं बेटा। आफताब ने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए और घुटनों पर बैठकर रोने लगा। आलिया का भी बुरा हाल था। आफताब रोते हुए सिर्फ यही कह रहा था, मेरे अल्लाह, मेरे पापा की तमन्ना भी अधूरी रह गई।

0: कहानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। हम जाने अनजाने में अपने बच्चों पर कुछ ज्यादा सख्ती करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत छोटी उम्र में हमसे डर जाते हैं और अपने ख्यालात, एहसासात, यहां तक कि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात का इजहार करने से डरते हैं, और ये डर हमारे बीच बहुत दूरी डाल देता है। बच्चों को प्यार से सिखाना चाहिए ताकि वो अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार अपने वालिदैन से खुलकर कर सकें।
1: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की।
2: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगाम मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: फन, एंटरटेनमेंट, न्यूज, नॉलेज 24/7 ओनली ऑन यूसीपी FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: सुनना है तो इसे सुनो।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
2: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।